जगन्नाथ की जय। मायापुर धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। भक्ति देवी।